जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की पटोलियां दी खेड मुक्की वीरां संग रोक मनाई पटोले।

0: बड़ी है। शुक्रिया जी।
1: सुत्यो हफ्ता भरी काम में फल दे बेचे हूं मैं थोड़ी जान पहचान पंजाबी देश नवे उभरते शायर तलविंदर शेरगिल जी ना करवाने जा रहे हैं। तलविंदर शेरगिल जी जिला शहीद भगत सिंह नगर दी तहसील बंगा दे नेड़े वसदे पिंड गुणा चौर तो हन। बहुत वधिया शायर ने इहदे नाल दी नाल उहनां दे एक लिखे हुए गीत पंजाब सिआं नूं साडे गायक कृष्ण ही उहने गाया है जिहड़ा इस वेले पंजाबी दे स्रोतियां दी बड़ी पसंद बनिया होया है। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨਿਗਾਹ

0: हाय जे तू बिछड़ गई ता साथू रोया भी नी जाना।
1: क्या
0: जे
1: बात है,
0: तू बिछड़ गई ता साथू रोया भी नहीं जाना।
1: क्या बात?

जी दोस्तो, सारे दोस्तों का दुआबा रेडियो के मंच उत्ते निका स्वागत है। माफी चाहते अज दोस्तो काफी मुशक्कत घोल के काम कर करके टेक्निकल इशू दे नाल तुहाडे रूबरू होए आ, माफी चाहते हैं। तकरीबन 40 मिनट आप लेट है, पर जिन्ना कुछ भी कर सकांगे जरूर तुहाडे रूबरू होवांगे। अज सब तो पहला समा स्थिति तुहानू पता ही है जी, पर समय वल नहीं जावांगे ते समा खराब नहीं होर करांगे। ते सारे दोस्तां दा दिलों धन्नवाद, तुसी इंतजार करदे हो, चाहे पोस्ट पा भी दित्ती सी कि अज प्रोग्राम नहीं हो पावेगा, पर तुहाडी उडीक तुहाडा प्यार मुहब्बत सब दोस्तां दा खिच लिआउंदा है। ते दोस्तो अज दीआं खबरां दे वल नूं ही चलदे आ सिद्धा, जो अज दे मुद्दे ने। ते समा जिवें इजाजत देवेगा, जिवें सबब बणेगा, अगे गल्लां बातां करदे जावांगे। ते लाइनां तुहाडे लई खुल्लियां रहिणगियां, +352 44 976 1920 स्टूडियो दा नंबर है। अजे वी कुछ कमी परेशानी लगदी है, पर आपां नाल नाल सूत कर लैणियां। थोड़ी जिहियां आवाजां जिहड़ियां ने अलग ढंग दे नाल निकलदियां दिखदियां ने। ते अज दोस्तो माफी चाहांगा, ते अज नाल दी नाल आपां पोस्टर दे नाल ही सारांगे, ते लाइव जिहड़ा वीडियो नहीं चल पावेगी उहदे लई वी गुस्ताखी माफ। ते अज समां ते स्थिति की गल करिए, 7 सितंबर 2026 का दिहाड़ा है, ते जिस दे विच अज दे विचार दे नाल शुरुआत कर लैंदे आ। थोड़ी जी दो क सत्रां ही सांझियां करांगे। कहिंदे हौसले बुलंद होने चाहीदे है, ते हौसले बुलंद होण तां सारा कुछ संभव हो सकदा है। ते दोस्तां मित्रां दा, सैणी साहब दा नाल, ओजला साहब, सारे जिन्ने भी तुसी दोस्त जुड़े हुए हो, जीरा साहब, सब दोस्तां दी उड़ीक दे विच हाजर आ। कहिंदे ने कि जेकर हौसला चलिया गया तां मनुख दी अद्धी समझदारी

आखदे ने लोक ही काठो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानियां हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानियां हड़ एकता दा बन के कटामा असी धरती बसणाए बन के कटामा असी धरती बसणाए धोवांगे गवार जेड़े बिच पौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रौण दे सिर बढ़ने ने बेलड़ा ने मां

0: लेरना सुंदर एक बहुत प्यारा गीत लेके हाजिर हो रही है। हरजीत रूबी जी, थोड़ा दुआबा रेडियो दे मंच के उत्ते स्वागत है।
1: हेलो जी, मैं हरजीत रूबी रेडियो दुआबा के सारे दर्शकों नूं तहे दिलों अदाब नमस्ते सत श्री अकाल करती हाँ। तो स्पैशली धन्यवाद करती हाँ जी मैं रेडियो दुआबा की सारी ही टीम का, तहेओं साहब जी का जिन्होंने मैनू अपना निघा सुनेहा फिर तो दिता रेडियो दुआबा की कवि दरबार विच हाजिर होने का। सो मैं समय के मौजूद हालात लैके हाजिर हुई हाँ जी। अपने दिल के ख्याल एक गीत च उतारन की कोशिश की है। उम्मीद करती हाँ कि आप सब जी सराहना करोगे। रे बन लाले चिट्टे पाले बापू दे सिर ते सारे शौक पुगा ले। रे बन लाले चिट्टे पाले बापू दे सिर ते सारे शौक पुगा ले। कान ला के सुन हुक्म, कान ला के सुन हुक्म, समय दी सरकार दा हथ चों फड़ा ता करंट नंगी किसे तार दा हथ चों

के माण रख दस्तार दा चा पुत्ता चा बापू तरने चवाचा मार दा आजा पुत्ता बापू तर ने चवाचा मारदा मां पुत्त देरी।

रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, कातों है नी।

अती रात तक करना आंदा, अती रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अती रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा। अज हंजू केर रोवे, अज हंजू केर रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो। किंज पैने फिर किते भंगड़े, किंज पैने फिर किते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउणा दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ, मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, पक्षियों वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, पक्षियों वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लियाना पैना, इनकलाब दा पुत्र लियाना पैना। सच कहंदे

तो ये चांद भी जमानों का आईना होगा, ये चांद भी जमानों का आईना होगा।

0: बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमा होगा, हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी,
1: बाज़
0: हथेलियों की ही ना याद कुछ दिलाएगी, करोगे याद तो गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी,
1: क्या बात है।
0: निगाह दूर तलक जा

अपनी खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा ए, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा ए। मखमल छड के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा ए।